0: Choice FM 90.4 MHz.
1: Wow, कति हैंडसम. Oh my God, love पाने पर सकी क्या हो?
2: वही क्या बता रहे हैं? सुपर मंदिर से लव वन ये चुर. इसी तो.
3: यार कुछ चांस आ गई थी ना तो चेक वो बने यार कुछ चांस आ गई. Oh. Thank you.

0: गोर्खा जिल्लाकै विश्वासिलो सुन चाँदी पसल
1: नारायण सुन चाँदी पसल बैंक रोड बस पार्क गोर्खा। फोन नम्बर 064-2420-70, मोबाइल नम्बर 98465।

जाने छप्पु डाँडै डाँडा तमाकु सितिले तिर मेरी कान्छी पोइला गई लाग्यो मलाई तिरे पिर।